0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हुई।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: देख 106.2 The Beat

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एकतरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: गुड मॉर्निंग, 7:07।
2: Bollywood.

0: सात बजकर दस मिनट ऑन दिस डे दैट एवरीबॉडी वेट्स फॉर इट इज अ फ्राइडे मॉर्निंग. इफ यू हैड टू यूज एन इमोजी, एक इमोजी से अगर आपको अभी जो आप इमोशन फील कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करना होता थ्रू एन इमोजी, व्हाट वुड यू चूज?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: देयर इज ऑफ कोर्स अ रीजन दैट आई एम आस्किंग यू दैट टुडे इज द वर्ल्ड इमोजी डे, एंड इसीलिए लगे हाथों कुछ नए नए इमोजीज भी आ गए हैं मार्केट के अंदर. लेकिन या आई मीन इफ यू वांट टू सेंड मी एन इमोजी, इफ यू वांट टू लाइक जॉइन हैंड इमोजी, laughing, crying, laughing wala emoji, etc. Which is your favorite one? We're going to talk about all that and much more right here on this 17th of July. It's a Friday morning, 7:11. Filhal, a song dedicated to the Friday.
2: Let's nacho.
0: It's time to nacho. After this last day at work, if there's a song that you want to dedicate to this Friday, to yourself, to your need, to somebody special in your life, you know what this is. This is the first hour of the show. It's the early morning request. 054-309-1062 is our WhatsApp number.
1: Big 106.2.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: Insurancemarket.ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
7: Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us, or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. T&Cs apply.
0: Big.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ए बुड्ढे,
1: नमस्ते।
0: पहले आप आदत कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती, लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है। गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है। देखिए,
1: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Hollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: InsuranceMarket.ae. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae.
8: Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us, or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. T&Cs apply.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
9: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
10: वेल, आई वर्क इन एन ऑडिटिंग कंपनी, तो थोड़ा कंपनी में सीरियस है।
11: ये क्या है ऑडिटिंग? ऑडिटिंग आपको एक्टिंग वैक्टिंग में घुसना चाहिए, लग रहे हो एक नंबर के एक्टर आप। ड्रामेबाज। चलो रिया, लेट्स सी कि यहाँ पे आपकी कितनी एक्टिंग प्रूव होती है, बिकॉज दिस इज अ बॉलीवुड गेम, नेम प्लेस मूवी थिंग हम खेलने वाले हैं। 4 कैटेगरीज, आई एम गिविंग यू द लेटर टी। टी से बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम।
10: तमन्ना।
11: वेरी गुड, तमन्ना भाटिया। हाँ जी। टी से बताओ मूवी।
10: काली जमीन पर।
11: टी से बताओ प्लेस।
10: तमिलनाडु।
11: टी से बताओ थिंग। सही बोला यार। You have played very well.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
12: It's 8:30 on the clock and let's take a look at some of the unusual places of traffic. Zyada koi jagah nahi hai aisi, but you'll find more than usual traffic at 6:11 aaj subah. Some roadworks going on right after Nasma Central Park, and that's why going south going towards Alavir aapko milegi 3 se 4 minute ki der. 311 also getting a bit busy heading south going towards Dubai from Sharjah. Roz ki tarah industrial area 6 mein heading east and west you'll find S112 par 3 se 4 minute ki der. Traffic is also building up at E44 heading towards Business Bay, and aaj subah se a bit of unusual traffic heading north, and this is going towards Alkuz Fort. In case you spot something and if it's safe to call me on 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
13: Gusse se bolegi, nahi jaunga. Pyar se bolegi, मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: 8:34 वीकेंड है भाई, प्लान हर कोई बनाता है, लेकिन कहां पर जाएं? यू कैन डिस्कवर फोर यूनिक डाइनिंग डेस्टिनेशंस, पैरोस, नोनिया, शामियाना एंड टीजेस, ऑल एट द जीएलटी स्टनिंग रूफटॉप सनसेट्स. अगर आपको चाहिए मेडिटेरेनियन फ्लेवर्स एंड शीक वाइब्स, हेड टू पैरोस. सेव ऑथेंटिक एशियन डेलिकेसीज एंड वाइब्रेंट एम्बियंस एट नोनिया. यू कैन एक्सपीरियंस ऑल डे डाइनिंग एट शामियाना एंड अ लाइवली सोशल सीन एट टीजेस. यू कैन मेक योर वीकेंड्स मेमोरेबल विद अ निसी ब्रंच एवरी फ्राइडे एट पैरोस, रेट्रो ब्रंच एवरी संडे एट नोनिया, एंड द पॉपुलर इवनिंग ब्रंच at TJ's.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउ स्मार्ट कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगता था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:07
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Yo, yo, yo, yo, got an ojla,

0: इतनी गर्मी में तो क्या चाहिए, एक स्टेकेशन मिल जाता तो.
1: Participate in summer song contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almired Ras Al Khaimah.
0: It is the last day that we could be doing the big summer surprises and the two contestants, last two contestants for the big breakfast ready with me on the phone line. Let's say good morning. Sabse pehle to Hitesh, kya hal chal hai?
2: Yeah, good morning. Sir, how are you?
0: Very, very good. Hitesh bhai, kahan par ho?
2: Office mein.
0: Office mein kya karte ho?
2: Bas time pass karta rehta hai aise radio mein message karke.
0: देखो एंड में सच निकल ही जाता है, हैं? We all pretend to work. Hitesh bhai is just being honest about it. I got Annu also with me on the phone line. Annu bhai, क्या चाल?
3: बस एकदम बढ़िया.
0: आप क्या, आप कितना टाइम पास करते हो? आप भी कुछ काम करने का प्रिटेंड करते हो?
3: मैं तो काम करता हूँ.
0: आप काम? अरे बाप रे बाप, ऐसा क्या करते हो, सच बताओ.
3: अकाउंटेंट हूँ.
0: तो अन्नु, दिन में आप कितनी फिल्में देखते हो मोबाइल, सच बताना.
3: नहीं, फिल्में नहीं, रील देखता.
0: रील देखता हूँ. आप फिर बोल रहे हो कि काम करता हूँ, फिर कहते हो रील भी देखता हूँ. चलो यार, यू गॉट टू लाइक पुट योर गेम फेस ऑन. आई कंप्लीटली एग्री, इट्स गोना गेट वेरी कंपेटिटिव. तो आप लोग दो जो हैं, यू नो, यू आर आर लास्ट कंटेस्टेंट्स ऑन द बिग ब्रेकफास्ट फॉर द बिग समर सरप्राइजेस, मतलब आखिरी बॉल पे छक्का इसको कहते हैं. तो हितेश भाई, कैसा फील कर रहे हो आप? कितनी जरूरत है आपको इस स्टेकेशन की?
2: बहुत जरूरत है.
0: क्यों, आप तो वैसे ही टाइम पास करते हो इतना, तो क्या जरूरत है?
2: बस ऐसे ही, बहुत टाइम से गए नहीं है तो चले जाएंगे.
0: चलो सही है यार. एंड हाउ अबाउट यू अन्नू?
3: मेरी अभी अभी शादी हुई है और वाइफ अभी आई है दुबई, तो मुझे बहुत जरूरत है.
0: ओए क्या बात है, शादी मुबारक हो. तो अभी तक दुबई की हवा लगी कि नहीं वाइफ को?
3: अभी अभी आई है, 2 महीने हुए.
0: अच्छा अच्छा, तो अभी तो मतलब वही.
2: कांग्रेचुलेशन अन्नू.
3: थैंक यू सो मच.
0: क्या बात है, बहुत याराना है, बट याराना यहीं तक होगा. और राइट, इसके बाद सिर्फ कंपटीशन ही हम लोग करने वाले हैं, बिकॉज हियर्स व्हाट्स गोना हैपन. मैं आपको ना 3 गाने सुनाने वाला हूँ, एंड 3 गाने ये होने वाले हैं वेकेशन से जुड़े, शॉट एट वंडरफुल लोकेशंस, कुड बी अ ट्रैवल सॉन्ग एज वेल. इन गानों को सुनकर अगर आपको फिल्म का नाम याद आ रहा है तो आपको अपना नाम बजर की तरह यूज करना है, ठीक है? ये कॉन्टेस्ट आपने सुना होगा पहले.
3: यस,
0: बट सिर्फ नाम नहीं चिल्लाना है आपको, बिग और अपना नाम चिल्लाना है. तो हितेश, अगर आपको लगता है कि जवाब पता है, क्या चिल्लाना है आपको?
2: बिग हितेश.
0: वेरी गुड. एंड अन्नू, आप क्या करोगे?
3: बिग अन्नू.
0: वेरी गुड. आप लोग ने पहले सुना हुआ है ये. ऑल सेट फॉर दिस कॉन्टेस्ट. यू आर द लास्ट 2 contestants ऑन द बिग ब्रेकफास्ट. सो शुड वी स्टार्ट द गेम?
3: ओके, यस, स्टार्ट.
0: रेडी हैं आप लोग?
3: यस.
0: तो सबसे पहला वाला गाना इज अ ट्रैवल सॉन्ग. आप में से कौन बता सकता है कि इस गाने की फिल्म का नाम क्या है?
3: अन्नू.
0: अन्नू.
3: यस, टशन.
0: टशन इज द करेक्ट आंसर. 1-0 इन फेवर ऑफ अन्नू. बकअप हितेश भाई, नेक्स्ट सॉन्ग, हु कैन टेल मी द फिल्म ऑफ दिस वन?
2: हितेश. एंटरटेनमेंट.
0: अरे ये पता था कि सर्च किया अभी?
2: नहीं नहीं, कैसे सर्च किया, फोन पे सीधा बोल दिया.
0: वेरी नाइस यार, दैट इज करेक्ट. जॉनी जॉनी एंटरटेनमेंट फिल्म का नाम है. इट इज 1-1 एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू द टाई ब्रेकर. जिसने इस सवाल का सही जवाब दिया उसका नाम चला जाएगा ड्रॉ के अंदर. रेडी गाइस?
2: यस.
0: द सॉन्ग इज
2: हितेश. ये जवानी
0: है दीवानी. अरे सही जवाब है, बिल्कुल सही. हितेश यार, अभी अभी अन्नू की शादी हुई है, कुछ तो रहम करते यार.
2: चलो उसको दे दो.
0: क्या बात कर रहे हो?
2: यस.
0: आर यू सीरियस अन्नू? वुड यू वांट टू एक्सेप्ट इट? अन्नू में लंबी खामोशी हो गई यार. अन्नू कह रहे हैं नहीं
3: जी,
0: मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. उसूल आदर्श, क्या बोलते हो अन्नू?
3: जो जीता है उसी को मिलना चाहिए.
0: चलो सही है यार अन्नू, बट थैंक यू वेरी मच. एंड हम सब की तरफ से एक बार फिर शादी मुबारक हो. एंड इट्स बीन 2 months एंड वी होप दैट यू हैव अ वंडरफुल टाइम टुगेदर हियर इन दुबई. फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट बिग 106.2, हितेश एंड एवरीबॉडी लिसनिंग इन एज वेल. ओके,
2: थैंक यू.
0: थैंक यू वेरी मच अन्नू. हितेश भाई, आप कहाँ जा रहे हो? आपने जीत लिए हैं इतना कुछ, 2 movie tickets प्लस एन F&B वाउचर. साथ में आपका नाम चला गया ड्रॉ के अंदर टू विन एन अनमिसेबल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमैरिड इन रसल खेमा. मुबारक हो भाई.
2: थैंक यू सो मच एंड थैंक यू.
0: आप बताओ कैसा लग रहा है?
2: अच्छा लग रहा है.
0: अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ड्रॉ में से नाम निकलेगा तो और अच्छा लगेगा, ये कहना चाह रहे हो आप? हैं
2: तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा,
0: सोने पे सुहागा। लेकिन ये जो टिकट्स है मूवी वाले एंड एफएनबी वॉचर, तो आपने डेफिनेटली जीत लिया है। सो एंजॉय योरसेल्फ, वी ऑल गॉट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू। यू आर द लास्ट कंटेस्टेंट ऑफ द बिग समर सरप्राइजेस ऑन द बिग ब्रेकफास्ट। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ड्रॉ।
2: थैंक्स टू यू सीड एंड थैंक्स टू बिग एफएम।
0: टेक केयर। ये हितेश हमारे आज के ड्रॉ एंट्रेंट है, हमारे आज के विनर हैं, द लास्ट विनर ऑन, इट्स अ बिटर स्वीट थिंग दैट आई एम सेइंग दिस मॉर्निंग राइट, बट डोंट फॉरगेट बिग समर सरप्राइजेस मेड पॉसिबल by our presenting sponsors. Thank you very much to Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almighty Russell Kemmer, and yeah, ये दो मूवी टिकट्स एफएनबी वाउचर भी जीतने का मौका था आपके पास। एक पूरा महीना हमने ये कॉन्टेस्ट खेला राइट हियर ऑन बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फनीशिया नेटवर्क।

0: It's 9:25 on this Friday morning and there's a lady in some corner of the world who apne favorite restaurant se hui bahut zyada disappointed hai, usse de diya one star review.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: I was such a big fan of your food that I made my husband drive almost 50 kilometers just to get takeaway of your food. Lekin aapne pyaaz to di nahi, maine jab dabba khol ke dekha पार्सल का तो उसमें प्याज तो थी नहीं. एंड योर ब्लूमिंग अनियंस आर द बेस्ट पार्ट. दैट इज व्हाई आई मेड माय हस्बैंड ड्राइव ऑल द वे देयर. ये लो एक स्टार मेरी तरफ से. नो प्याज नो अच्छे रिव्यू. अच्छा ये हो गया. उसके कुछ ही घंटे बाद उसी ट्रेल में नीचे अपने ही कमेंट पे रिव्यू करते हुए लेडी ने कहा कि सॉरी मुझसे गलती हो गई. आई जस्ट फाउंड आउट के घर आते हुए माय हस्बैंड ने खुद ही वो ब्लूमिंग अनियंस खा लिए थे. एंड नाउ आई एम अ बिट टेक्नोलॉजी चैलेंज सो आई डोंट नो हाउ टू चेंज माय ओन रेटिंग. कैन यू प्लीज टेल मी. इस नए कमेंट में उन्होंने 5-star रेटिंग दिए थे उस रेस्टोरेंट को. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. बट टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग, इवन इफ यू हैव ड्राइव ऑल दिस वे 50 किलोमीटर्स जस्ट टू गेट प्याज, यू वोंट माइंड बिकॉज ऑल थैंक्स टू जेटू. राइट, इफ यू रेडी फॉर अ सीरियस एसयूवी अपग्रेड यू कैन चेक आउट द लेटेस्ट डील्स फ्रॉम जेटू. ड्राइव होम अ ब्रांड न्यू जेटू, 0 VAT और 0% इंटरेस्ट एंड 1,000,000 किलोमीटर्स की वारंटी, अप टू 10,000 दिरहम्स का कैशबैक एंड फ्री इंश्योरेंस ऑन सिलेक्टेड मॉडल्स एज वेल. द बेस्ट पार्ट, यू कैन बाय नाउ एंड पे अगले साल. Your dream SUV could be yours. EMI started just 966 dirhams a month. Head to Jetour showrooms in Abu Dhabi, Dubai, Ajman or Alain and take it for a spin today. Jetour UAE, part of the Elite Group Holding. T's and C's do apply.
1: Big 106.2.

0: गांव के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: गोती लो, विच मीन्स ढूंढ लो इन गुजराती, भाई ढूंढ के दिखा दो अ बिगर इवेंट देन व्हाट्स गोना हैपन ऑन संडे 19th, गोना बी अर्जेंटीना टेकिंग ऑन स्पेन द फाइनल्स द फीफा वर्ल्ड कप 2026.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इट हैज बीन कंफर्मड दैट डोनाल्ड ट्रंप देख रहे होंगे द फाइनल्स, जाकर देखने वाले हैं इन द वीआईपी बॉक्स, एंड फाइनल्स में जो जीतेगा उसको ट्रॉफी प्रेजेंट भी करने वाले हैं. या इट्स द न्यूज़ दैट नोबडी केयर्स अबाउट, बट व्हाट वी डू केयर अबाउट इज ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अवे फ्रॉम द प्लेयर्स. प्लेयर्स की लाइफ में तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ ह्यूज मोमेंट एंड समथिंग दैट ऑल फुटबॉल aspiring, you know, children are thinking about right now. Okay, ek din main FIFA World Cup final khelunga. But you know, one of the most under appreciated roles in sport is that of a referee or an umpire. And I just saw this heartwarming scene ke sare jo referees hain football ke, FIFA ke jo selected hain, wo ek room mein baithe hue hain aur announce ho raha hai ke who's going to be the referee for the FIFA World Cup final. And when Slavko Vincic's name was announced, he was reduced to tears. Matlab he couldn't hold back his tears. And made me realize ke haan yaar, matlab not just the players but even for referees, such a huge moment to be selected to officiate in the biggest event in sports. So yeah, it's going to be Slavko Vincic, and he is going to be officiating in the finals of the FIFA World Cup. What a dhurandar event that is going to be. Speaking of Durandar, Ari Ari coming up in just a while. Aap kahan par dekh rahe hain? Plenty of free places to watch the football finals, the World Cup finals across the UAE. It's one of those things jo aap ghar pe baith ke nahi dekh sakte ho.
2: Are go hai kya?
3: Yeah.
4: Kaatege kya?

0: 92. The Beat of Bollywood. This football season, enjoy every single match live at the Huddle Bur Dubai, the Huddle Al Barsha and Brewhouse, the official fan zones of the World Cup. Expect special World Cup menus and happy hour deals with select beverages from 24 dirhams. If that doesn't make you scream,
1: goal!
0: They're broadcasting games past 3 a.m. For more information, follow at the Huddle UAE and at Brewhouse DXB on Instagram. Terms and conditions apply.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ दो घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार अपना फ्यूचर.
7: Spin big with Big Ticket.
8: 20 million dirham grand prize.
7: 1 million dirham big spin chance.
8: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
7: Buy now at bigticket.ae.
9: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNC's apply.
10: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Ha ha. Chal hata. Ha ha.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: Morning is 9:41 on this Friday. ke subah kuch ghante aur uske baad weekend. कहाँ पर ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है? ज़्यादा कुछ भी नहीं है. दिस 311 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. दिस इज दैट यूजुअल यू नो एरियाज अलनाद इंटरचेंज 1E11 पर एंड इंडस्ट्रियल एरिया 15 ऑन 311 हेडिंग साउथ. यू फाइंड 3-4 मिनट की देर S112 पे देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन राइट आफ्टर यूनिवर्सिटी सिटी हेडिंग वेस्ट एंड 611 एमिरेट्स रोड पर यू फाइंड 3-4 मिनट की देर हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अल अवीर.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: It's 9:48 on the clock. It's the 17th of July, Friday ki subah. It's time for the big Bollywood quiz.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Birthdays, anniversaries, event, koi bhi hum log bahana dhoondte hain to celebrate a particular movie, take a trip down memory lane. Aaj 11th anniversary hai of ek particular superstar ki my all-time favorite movie of a particular superstar. इससे ज़्यादा और कोई clue मैं आपको नहीं देने वाला हूँ. जैसे ही आप आज का scene and focus सुनेंगे, you will understand what film I'm talking about. Which film celebrates its 11th anniversary? It was released on the 17th of July in 2015. इस scene को सुनिए. Film का नाम मुझे बताइए.
2: कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे. अरे यार ये फिर आ गए भाई, दर्शन निकलो ना, एक बार गाड़ी निकल जाएगी यार. कराची से अंदरून मुल्क, अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दर्शन कर गाड़ी निकल जाएगी. कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में, यार बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल जाना भाई. कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे. क्या कर रही बीबी, उधर से निकल जाओ, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी. कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में, कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दर्शन कर गाड़ी निकल जाएगी. कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं. कैमरामैन कामिल हुसैन साहब, चांद नवाब चावड़ा. बगला देखो, देख सामने देखो.
3: अरे रास्ते में क्यों खड़ा है फिर?
2: तो देखो हमारा सर.
0: Alright, फिल्म का नाम अगर आपको पता है तो मुझे कॉल कीजिए 800-1062. That's the number, 800-1062. Two open movie tickets you could win in the big Bollywood quiz.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय जुलेखा हॉस्पिटल, योर हेल्थ मैटर्स।
2: नमस्ते,
3: ओला,
2: अस्सलाम वालेकुम,
4: बोंजूर,
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, Now, just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:07।
1: बॉलीवुड।

0: शर्म हो गया, हम लोग पांच में से चार दिन वेट करते रहते हैं कि पांचवा दिन कब आएगा। इट इज दैट डे, इट इज अ फ्राइडे। दिस इज बिग 106.2
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: चलो मोहित से पूछते हैं कि उनके वीकेंड के क्या प्लान है। मोहित, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सिद्ध भाई, कैसे हो?
0: बिल्कुल बढ़िया मोहित भाई, आप बताओ कि क्या कुछ धांसू प्लान किया हुआ है वीकेंड पर?
2: धांसू प्लान किया तो नहीं अभी तक, बट क्योंकि फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट सोच रहा हूँ कि कुछ देखे इस बार, क्योंकि अर्जेंटीना का जो चल रहा है ना, तो उसके जस्ट देखने का मतलब ऐसा, अभी तक मुझे नॉलेज नहीं है फुटबॉल का इतना, क्रिकेट का है, फुटबॉल का नहीं है, बट सोच रहा हूँ कि उसमें जाके थोड़ा देखने का मन करता है।
0: तो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना, इसीलिए यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेक अ प्रेडिक्शन, क्योंकि क्या है कि आपका कोई फेवरेट टीम नहीं है। तो क्या लगता है आपको, अगर मैं आपको दो दो नाम बताऊं, स्पेन अर्जेंटीना?
2: मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था इजिप्ट और अर्जेंटीना की मैच थी ना उसी टाइम पे, कि अर्जेंटीना फाइनल में जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना जीतेगी।
0: क्या बात है, आपको आइडिया ही नहीं कितने देसी लोग आपको कह रहे हैं, आपके मुंह में घी शक्कर। आई एम स्टिल टू फिगर आउट, मतलब ये पूरा जो फीफा का वर्ल्ड कप चला है ना, मेरा हमेशा से ये क्वेश्चन था ऑल द देसीज कि हम लोग अर्जेंटीना को क्यों इतना सपोर्ट करते हैं भाई। मतलब आई थिंक ब्राजील भी इट कम्स नोवेयर क्लोज कि जितना फैंडम अर्जेंटीना का है, एंड आई थिंक मेसी, मैराडोना, देव गॉट दी सुपर स्टार्स, उसकी वजह से काफ़ी पागलपन है अर्जेंटीना का। सो बहुत ही कम ऐसे देसी मिलेंगे जो स्पेन को सपोर्ट कर रहे होंगे, बट बढ़िया। व्हेन इट कम्स टू अस देसीज, एक काम तो हम लोग करते ही हैं ओवर द वीकेंड, एंड दैट इज टॉक अबाउट मूवीज, टॉक अबाउट बॉलीवुड। फिल्मों के तो आप बड़े फैन होंगे ही, फुटबॉल के नहीं?
2: बहुत बड़ा फैन हूँ। इस आप खत्म करो फिर, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको।
0: तो क्वेश्चन तो क्या मैं पूछूं आपको? क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, कौन सी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने चांद नवाब का रोल किया था, सलमान खान की मेरी फेवरेट मूवी है, फिल्म का नाम क्या है?
2: बजरंगी भाईजान।
0: एब्सोल्युटली करेक्ट यार, कांग्रेचुलेशंस मोहित।
2: थैंक यू।
0: हमारा कंट्रीब्यूशन टू योर वीकेंड इज,
2: इसकी स्टोरी क्या है?
0: हाँ बताओ बताओ।
2: ये एक्चुअली ना ईद के आसपास में कुछ रिलीज हुआ था ये मूवी, मुझे जब तक याद है, और उस दिन ना मेरा ना नाइट शिफ्ट था, मतलब मैं उस टाइम पे बतूता में काम कर रहा था, तो उधर ना मेरा एक नाइट शिफ्ट था, तो वो हमारा जब मार्केट क्लोज होता है ना, तो उसके बाद में एंट्री मिलती है नाइट इम्प्लीमेंटेशन के लिए,
0: राइट?
2: तो हाँ, तो उस टाइम पे मैं अभी मेट्रो में चला तो गया था 9:30 के आसपास में, 8:30-9:30 के आसपास में, बोला 3 घंटा करूँ क्या अभी, तो मैंने बाद में देखा चलो मूवी आई है ना, तो मैं फिर देख के आया था उस टाइम पे 9:30 से 12 के टाइम पे। तो यही है, मतलब क्या करना है, मतलब मूवी एक होता है ना कि देखना है, टाइम नहीं मिलता है, तो जिस टाइम में मिला ना उस टाइम पे मैंने देख लेता हूँ फिर।
0: इसीलिए ना कभी किसी स्टोरी से पहले मोहित भाई बोलना नहीं चाहिए कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है मेरे पास, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन बड़ी बढ़ जाती है भाई। मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी पंचलाइन आएगा, कुछ करोगे ऐसा सिनेमा हॉल में, कुछ किया अंधेरे में, कुछ नहीं,
2: बस पंचलाइन वही थी कि ड्यूटी ऑलरेडी चालू हो गया था फिर भी,
0: अरे
2: मतलब हमारा क्या पंचिंग करके कंपनी से आना था, कंपनी से पंचिंग करके आते थे नाइट शिफ्ट में भी, तो हमारा ऑलरेडी ड्यूटी टाइम था, फिर
0: बात ऐसे कर रहे हो जैसे कंपनी वालों ने पैसा दिया टिकट का यार।
2: नहीं, खुद ही लिया था टिकट।
0: हाँ
2: तो
0: बस इससे अच्छे तो हम है कि हमने आपको 2 टिकट दे दिए मुफ्त में, कांग्रेचुलेशन।
2: सही है, मेरे को वो बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे आपका एक ना ये बहुत पसंद है कि आप कॉल कर दो, कॉल करके फिर कंटिन्यूसली कॉल पे रहते हैं ना, तो मतलब वो लगता है कब उठाएंगे कॉल, कब उठाएंगे कॉल।
0: चलो ज्यादा पोल मत खोलो अभी, कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय योरसेल्फ एट द वीकेंड, एंड यू नो देखते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन राइट होती है कि नहीं। अर्जेंटीना कह दिया है मोहित ने,
2: मैं आपको कॉल करूंगा,
0: बिल्कुल मंडे कॉल करना, और अगर डेफिनेटली अगर आपने फाइनल देखा तो पक्का ही कॉल करना, ठीक है?
2: ठीक है,
0: ऑलराइट, दैट इज मोहित हमारे आज के विनर। डोंट फॉरगेट, रोज सुबह ये मौका आपके पास टू फ्लेक्स योर बॉलीवुड मसल, विन 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज। Cocktail 2 से जब तक कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल, दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड। गुड मॉर्निंग।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Listen to her every day.
2: Mugembo!
3: Subhash, I want to ask you this question. I came across this research that says that 87% men, जैसे उनकी girlfriend बनती है, वो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं. तो आपने ये किया है जब college के time पे कोई girlfriend बनी तो दोस्तों को भूल गए?
4: मेरे साथ ऐसा हो गया है. मैंने actually मैं नहीं छोड़ा था, लेकिन लोग मुझे बोलने लग गए थे कि मैं छोड़ दिया. मतलब girlfriend मिलने से कोई friend को कैसे छोड़ सकता है?
3: Friend को time नहीं देते हैं लड़के. जैसे ही girlfriend आती है सारा time girlfriend को देते हैं, friends को time नहीं देते.
4: Time नहीं देने का मतलब तो ये नहीं है कि हमने छोड़ दिया.
3: तो ये कॉलेज के टाइम की बात है?
4: हाँ, कॉलेज के टाइम की बात है.
3: फिर उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ?
4: अरे पूछो मत, आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ. मैं मैरिड
3: नाउ. ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू नो कि जिसके लिए आपने दोस्तों से बात करनी छोड़ दी थी, वो रही कि नहीं रही आपके साथ?
4: नहीं रही ना.
3: इसलिए हमेशा दोस्तों को आगे रखो, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते जाते रहते हैं, दोस्ती का कंधा काम आता है रोने के लिए.
5: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata.
5: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: It's 10:24 and a bit of unusual traffic heading south, right? Going away from Afraq Industrial Area. Aaj aapko milne wala E11 Abu Dhabi ki main baat kar raha hu. Ek baar phir heading south, right after Afraq Industrial. You'll find 3 to 4 minutes ka delay. In case you have more info about this or any other traffic situation, give me a call 800-1062. Iske alawa Dubai Sharjah mein the usual heading south, going towards Dubai from Sharjah. You'll find 3 to 4 minutes max ki der. ज़्यादा कुछ नहीं. बेरूत स्ट्रीट का भी ट्रैफिक बढ़ रहा है, एंड दिस इज इन बोथ डायरेक्शंस राइट आउटसाइड मदीना मॉल.
5: सिया सेल्फ ड्राइव्स न्यू एआई असिस्टेंट हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. विजिट selfdrive.ae.
8: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है. दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
5: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Cocktail 2 से जग से लाज and talking about लाज शर्म. If you're a sales person, you would be believing in the fact कि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: And when it comes to sales and marketing, यार, you have to kind of give it to the Americans. They have made the rules, उनके जैसे कोई है ही नहीं. इसके काफी सारे examples हमको इस बार के FIFA World Cup में मिले. Of course, been played in the United States and Maradona, Shishi ने कह दिया था पहले कि अगर Americans जुड़े तो हमारे game के वो चार हिस्से कर देंगे. वैसा ही हुआ. I mean, people are saying, yeah, the hydration break, why? It's one of that strategic timeout in the IPL introduced in the FIFA for the first time. Then the halftime was capped at 15 minutes, like in finale mein, in the finals, you're going to see Madonna, Shakira, BTS on stage. So, yaar, 15 minutes se baat nahi banegi na, aadhe ghante ka ye show hone wala hai, double of what it's capped at, and people are saying ki nahi, isse jo players hai, unka rhythm ka kya hoga, etc. And then other people are saying ki nahi, ye to yaar spectacle hai. तो फिर व्हाट किसी को क्या इतराज हो सकता है. इफ द बिगेस्ट स्टार्स आर कमिंग, इट्स जस्ट फॉर द फाइनल्स, राइट. एंड देन द लेटेस्ट अमेरिकन थिंग टू कम अप इन दिस वर्ल्ड कप इज दैट द विनर्स दिस टाइम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप आर गोइंग टू रिसीव हिस्टोरिक फर्स्ट टाइम चैंपियनशिप रिंग्स. एज अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग अमेरिकन स्पोर्ट्स ट्रेडिशन जिसमें वो बिस्पोक रिंग्स मिलती हैं 2026, बिकॉज इट्स द 2026 वर्ल्ड कप. 2026 इंडिविजुअली नंबर्ड पीसेज आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. इसमें से 30 रिंग्स अवॉर्ड की जाएंगी टू द विनिंग टीम एंड द रिमेनिंग 1996 आर गोना बी मेड, यू गेस्ट इट राइट, अवेलेबल टू फैंस वर्ल्ड वाइड. दे कैन बाय इट, ऑफिशियल लाइसेंस प्रोडक्ट होगा, गिविंग सपोर्टर्स द चांस टू ओन अ पीस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री. अमेजिंग इज़न्ट इट. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.

0: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: It's 10:41. No major congestion across the UAE, and थोड़ा बहुत traffic आपको मिलने वाला है at 3:11 as usual as you get out of city center Zaya. 2 to 3 minutes max extra बिताएंगे वहाँ पर. E11 is almost completely smooth flowing. हल्का बिल्कुल traffic at Al Nader Interchange 1. There's a bit of congestion heading north right after Medina Mall at D62. इसके अलावा everything else seems to be quite smooth flowing. Abu Dhabi में भी अगर जाए तो हेडिंग अवे फ्रॉम बनियास दिस टाइम अफ्रक इंडस्ट्रियल हेडिंग साउथ ऑन E11 यू विल फाइंड 2 to 3 minutes की देर. एवरीथिंग एल्स इज क्वाइट ओके. गिव मी अ कॉल इन केस यू स्पॉट समथिंग. 800-1062 पर.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: लाइफ में जब थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाए, वन थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू इज वॉच एन एनिमेटेड मूवी. दैट्स व्हाट आई फाइंड मायसेल्फ डूइंग. टॉकिंग अबाउट एनिमेटेड मूवीज, टॉय स्टोरी 5 इज गेटिंग ग्रेट रिव्यूज.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आई मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉय स्टोरी 5 एंड पापा जॉन्स, यानी कि टेंशन बिल्कुल दूर भाग गया. देन पापा जॉन्स एंड टॉय स्टोरी 5 पिज्जास हैव लैंडेड ब्रिंगिंग मूवी इंस्पायर्ड फ्लेवर्स टू योर नेक्स्ट मील. ट्राई द स्पेस रेंजर रॉनी लोडेड विद डबल पेपरोनी फॉर अ बोल्ड मीटी बाइट. राउंड अप योर एपेटाइट विद द शेरिफ्स राउंड अप टॉप विद बारबेक्यू चिकन एंड अनियंस. रीच फॉर द पाई, एंजॉय delicious combo of Italian sausage and banana peppers. Order any two or more Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams each and get your hands on a collectible with your qualifying order while stocks last. Better ingredients, better pizza, Papa John's. Order now.

0: होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood. What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze, and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The big mix, miss kiya gaya.
1: चाहो भी तो नहीं कर सकते.
2: हाय निखिल, हाउ आर यू?
3: हाय हाय हाय बोला.
2: इतनी बार हाय बोल दिया. हाय हाय हेलो हाय.
3: पहली बार बात कर रहा हूँ ना, सीट से बात होती रही.
2: अरे मुझसे पहली बार बात कर रहे हो, मैं क्या इंटिमिडेटिंग लग रही हूँ आपको? नहीं ना.
3: नहीं नहीं नहीं,
2: इतनी स्वीट सी तो आवाज है मेरी. ऐसे जब मैं इंसान आगे से बोल रहा होता है तो मतलब दैट्स अ क्यू फॉर यू टू कॉम्प्लीमेंट. आप कर ही नहीं रहे हो मतलब.
3: तो वैसे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट और है मैम.
2: ओहो प्लीज गो अहेड.
3: वो मस्तला गाना है ना जो अभी नया रिलीज हुआ है.
2: हाँ जी.
3: उसका वो सिंगर का वॉइस और आपका वॉइस 101% मैच.
2: व्हाट आर यू सेइंग?
3: हाँ मैम, सीरियसली मैंने कितने बार सोचा कि फोन करूं पर टाइम नहीं मिला. अभी मैंने सोचा कि आज मैं बोल ही दूं आपको.
2: अरे व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट यार निखिल. अच्छा कैन यू कंप्लीट द सॉन्ग फॉर मी?
3: कौन सा वाला?
2: ये सुनो. आज की रात मजा हो उसने कहा.
3: आज की रात मजा ले.
2: ये नहीं करना चाहिए था मुझे. आंसर देने के बाद चुपचाप फोन रख देना चाहिए था.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच? पाँच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: के क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: Earn Gojek coins every time you use the app and redeem them for amazing discounts and deals from top brands in the UAE and a whole lot more. Download GoChat, the free calling app, today.
3: Big 106.2, the beat of

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood. Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 107 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल 48% पर है। इट्स ब्राइट एंड सनी डे, आज लोज जाएंगे 33 तक।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिल्कुल सही यार, जोहरा के साथ ऑन द बिग मिक्स. फिलहाल इस पहले घंटे में हम खेल रहे हैं द बिग बॉलीवुड अंडर कवर. और आज जिस सेलिब्रिटी की मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक ऑल मिलेनियल गर्ल्स विल गेट अप एंड से यार हमारा बचपन इन्हीं को देख देख कर गुजरा है. एंड ही इज समवन दैट वी आर टिल डेट सो फॉन्ड ऑफ. ठीक है, चलो लेट्स गेट इनटू इट विदाउट एनी डिलेज. ही इज एन इंडियन एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर एंड कॉमेडियन. लेकिन हमारा चाइल्डहुड जो था, हमारे चाइल्डहुड का हाईलाइट जो था, वॉज हिज कॉमेंट्री ऑन द जैपनीज टीवी शो तकेशीज कासल. ही होस्टेड अ डांस कॉम्पिटिशन शो विथ हिज ब्रदर एंड हिज क्लोज फ्रेंड. एंड अगर आपने अभी तक ये गेस नहीं किया मैं किसकी बात कर रही हूँ, देन इन हिज वर्ड्स, आदि यू आर नॉट सो स्मार्ट आदि. मैं किसकी बात कर रही हूँ, इज एन इंडियन एक्टर, डांसर, प्रोड्यूसर एंड कॉमेडियन. बट आर हाईलाइट, एवरी मिलेनियल चाइल्डहुड का हाईलाइट वॉज हिज कॉमेंट्री ऑन द जैपनीज टीवी शो तकेशीज कासल. He hosted a dance competition show with his brother and close friend. And if aapne abhi tak nahi guess kiya hai, then it is his words, Adi, you are not so smart. Main kis actor ki baat kar rahi hoon? If you think you've been able to guess, mujhe call karo 800-1062 pe. That's 800-1062 pe. Which is this actor that I'm talking about? Yaar, Takeshi's Castle bolte hi aapko pata hona chahiye.
2: What's up everyone?
1: नमस्ते.
3: ओला.
1: अस्सलाम वालेकुम.
4: बोंजूर.
5: नी हाओ.
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो. इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae. सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. नो स्क्रोलिंग. विजिट selfdrive.ae. सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू.
6: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip? Posting pictures from a trekking adventure? Or FaceTiming your family from a remote island? Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
0: Listen to her every day.
7: Mugambo! खुश हुआ.
1: एवरी पर्सन हियर इज अ सिंगर. मतलब इतना टैलेंट छुपा हुआ है, क्यों छुपा के रखना है. यहाँ पे प्लेटफॉर्म है गिविंग यू चांस टू होस्ट योर ओन कॉन्सर्ट एवरी सिंगल इवनिंग. दिस इज द बिग थ्रिल. एंड कैरियोकी, गाड़ी में कैरियोकी करने का मौका आपको मिलता है. राइट अल्बिना, योर ट्रैक इज

0: आए हाय, हम दुआ करते हैं कि आप और गाएं, आप और अच्छा गाती हैं। मैंने भी एक बार अपना बर्थडे कैरियोके बर्थडे पार्टी की थी एंड मेरी एक फ्रेंड ने माइक ही नहीं छोड़ा, हमें वो जगह छोड़नी पड़ी बिकॉज यू नो द गाय हैड टू कम इनसाइड दैट बूथ। आई एम नॉट इवन किडिंग एंड से प्लीज प्लीज लीव, आई डोंट वांट टू लूज बिजनेस बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सिंगिंग।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata yaar sunna.
1: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: The best part about a Friday is no traffic on the roads. अगर आप शारजा की तरफ जा रहे हैं E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, बहुत ही लाइट ट्रैफिक आपको मिलेगा। दिस इज अराउंड मुहैसना 4 अंटिल S102 शारजा रिंग रोड लाइट ट्रैफिक है, सो अबाउट 5 to 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड। एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ है अराउंड D91 नाहदा स्ट्रीट, ऑल्सो अनदर कार एक्सीडेंट रिपोर्टेड ऑन D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट, वहाँ पे भी 5 to 7 मिनट का आपको डिले मिल जाएगा। एनी अदर अपडेट आप हमें मैसेज करके बता सकते हो ना व्हाट्सएप 0543091062।
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
5: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.
6: Slow.

0: self drives new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Zora ke saath ho ab haan ji, a very very good afternoon. It's 1:32 on the big clock. Filhal hum khel rahe hain the big Bollywood undercover.
0: The Big Mix with Zora on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: आज भी मैंने आपको चार क्लूज दिए थे. यू नीडेड टू टेल मी विच एक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट. विद मी ऑन द फोन लाइन राइट नाउ तुषार. हाय तुषार.
2: हाय ज़ोरा, गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून. आई एम गुड. व्हाट अ चर्पी नाइस वॉइस यू हैव यार. क्या करते हो आप?
2: आई वर्क इन सेल्स. आई एम इन सेल्स एंड मार्केटिंग. आई वर्क फॉर प्रिंटिंग सॉल्यूशन कंपनी.
1: तो यू आर यूज्ड टू बीइंग एक्स्ट्रा नाइस टू पीपल टू गेट मनी आउट ऑफ देम.
2: Absolutely, absolutely. That is the reason why we all are here to make money.
1: मेरे out of तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा. मेरे साथ sweet होने की क्या ज़रूरत है मेरा?
2: नहीं, I mean, we get motivated with your calls and with your energy. You know, that gives us a little more motivation to move.
1: Actually, it's the other way around. Honestly speaking, when आप हमसे बात करते हो, you motivate us to do a better job, to do a better show. And actually, हमारे दिन अच्छा जाता है when someone talks to us nicely. So thank you so much, Tushar.
2: Thank you very much.
1: Tushar, चलो मैंने आपको चार क्लूज दिए थे. आपको मुझे बताना है कौन है इंडियन एक्टर जो डांसर प्रोड्यूसर कॉमेडियन भी है. इनकी कॉमेंट्री तकेशी's कासल पे दैट शेप्ड आवर चाइल्डहुड. ही होस्टेड अ डांस कॉम्पिटिशन अपने भाई और क्लोज फ्रेंड के साथ. और अगर नहीं गेस किया तो यू आर नॉट सो स्मार्ट. किसकी बात कर रही हूँ मैं?
2: एकदम क्लियर आंसर है. मूवी तो मैंने बहुत पहले देखी जो 100 डेज थी. एंड ही इज नन अदर देन जावेद जाफरी.
1: एब्सोल्युटली यार, आपने तो पूरा होमवर्क रिसर्च सब किया हुआ है. यू आर अ ट्रू फैन.
2: इनके इनका रिसेंट एक शो आ रहा है टीवी पे, इंडिया वाला डांस, जहाँ पे ये करिश्मा के साथ होस्ट कर रहे हैं. करिश्मा है, टेरेंस है. और जहाँ तक नॉलेज का सवाल है तो अभी रिसेंटली इनको देखते भी आ रहा हूँ. आई मीन वी ऑल लव इज डांसिंग, नो डाउट. इनिशियली हम सब लोग को माइकल जैक्सन की तरह बोल रहे थे, बट इट्स फाइन. आई मीन एज ऑफ नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे डांसर्स होंगे. But he was the OG
1: for us, really. And especially when I saw his little cameo in that movie जहाँ पे इनके बेटे थे, that I think was the limelight for me, like the highlight for me.
2: आपको दिल से बात बताऊं, आई मीन बाप बेटों के डांस पे बेटे को बाप को बेटा
1: 100% बाप को तो आप कंपटीशन दे ही नहीं सकते हो. बाप लेजेंड है.
2: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. और उनकी जो फर्स्ट शो थी ना, जो जिन्होंने डांस इंडिया शो पहले शुरू किया, बूगी बूगी, नावेद और जावेद.
1: बूगी बूगी कौन भूल सकता है यार, इतना आइकॉनिक डांस शो नावेद के साथ. एंड इट्स जस्ट लाइक ओ माई गॉड, दैट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज. इवन तकेशी's कासल, आई थिंक हर बच्चे का वो चाइल्डहुड उसी में निकला है. पोगो टीवी आता था, उस पर हम लगाते थे तकेशी's कासल. इवन दो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता था, बट इस कॉमेंट्री मेड इट सो सो सो फन टू वॉच.
2: Absolutely true, absolutely true. That is none other than Javed Jaffrey.
1: 100% yaar, maza aa gaya. Chalo yaar, it was super super fun talking to you. Jitna Javed Jaffrey hame entertain karte hai, mujhe aisa lagta hai real life mein aap bhi apne team ko, apne groups ko itna entertain karte honge. You seem like a very fun person to be around. It was super super fun talk. I am, wow, what a confidence. Love it, Tushar.
2: Thank you very much. Thanks for the call and thank you for taking
1: me. Have a great, great weekend, yeah, Tushar.
2: Bye. Bye.
1: Yes, that was Javed Jaffrey, जिनकी हम बात कर रहे थे. सुपर सुपर टैलेंटेड. एक चीज नहीं, मतलब पांच चीजें करते और पांचों में ही जस्ट एसेस एवरीथिंग ही डज. दैट इज हु जावेद जाफरी इज. एंड रिसेंटली मैंने धमाल 4 भी देखी. सो यार, मूवी का मुझे नहीं पता, लेकिन जावेद जाफरी से मुझे इतना प्यार है. एवरी कैरेक्टर ही प्लेज इज लाइक अ 10/10 फॉर मी. एब्सोल्यूट लव फॉर हिम.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Big 106.2

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

लव द सॉन्ग बट आई लव द मूवी मोर देन दैट यार. मुझे ऑनेस्टली इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं इस मूवी से, बट आई थिंक शनाया एंड आदर्श बोथ ऑफ देम डिड अ फैब जॉब. येस इट वॉज एन अडेप्टेशन बट आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी वेल मेड. तू या मैं से आपने सुना आंखें चार ऑन द बिग मिक्स. फिलहाल 146 हो चुके हैं जोहरा के साथ. आप वेयरिंग इन टू द सेकेंड आवर ऑफ द शो. आई विल बी कीपिंग यू कंपनी ऑल द वे अंटिल 5 PM.

0: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, 2:07 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: پیدا تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کبھی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood.
2: This summer, there are surprises all across Dubai waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
1: The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: 38 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 50% पर पहुंच चुकी है. हाईज इससे ज्यादा आज नहीं जाएंगे, विच इज एक्चुअली गुड न्यूज. एंड लोज आज एक्सपेक्टेड है सिर्फ 33 के. सो इट्स गोइंग टू बी हॉट एंड ह्यूमिड.
1: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो.
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: हाँ जी, good afternoon. Zohra के साथ हो आप on the Big Mix शाम 5 बजे तक. फिलहाल इस दूसरे घंटे में on the Big Bollywood tea. यार ये screenshot जो है बहुत ज़्यादा viral जा रहा है because it's been 8 years that they've been happily married. They have a beautiful 4-year-old daughter as well. I'm talking about Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas. ठीक है. Recently they appeared on the Jonas Brothers podcast. And उस podcast पे ये topic निकला. You know, पहली बार कैसे मिले, पहली बार बात कैसे की, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ. एंड वाज अ वेरी क्यूट स्टोरी बिकॉज इट वाज ऑल थ्रू एन इंस्टाग्राम डीएम. यस, आजकल लव स्टोरीज इंस्टाग्राम डीएम पे ही शुरू होती है. द क्रेजीएस्ट लव स्टोरी स्टार्ट ऑन एन इंस्टाग्राम डीएम एंड आई कैन गारंटी एंड कन्फर्म दैट माई सेल्फ. क्यों मैं बताती हूँ, बट लेट्स गेट टू दिस फर्स्ट. ठीक है. सो ये स्क्रीन शॉट वायरल जा रहा है ऑफ देयर चैट. इट इज सो क्यूट बिकॉज निक ने पहले प्रियंका को मैसेज किया था सेइंग हेलो, आई हैव हर्ड फ्रॉम अ फ्यू पीपल दैट वी शुड मीट. आई हैव टू अग्री विद दीज पीपल. आर यू इन एल ए anytime soon. Itna casual sa message, but it was obvious that I'm very interested in you and I would like to meet you. And Priyanka Chopra obviously replied saying, hey, Graham's told me so much about you. Let's text more private because my team can access this. So unko pata chala ki wo bhi interested thi. Unme she did want to talk to him, but not over there because obviously bade bade celebrities ka Instagram handle jo hai, wo unki teams handle karti hai. So she knew that she had to talk somewhere private. And that's how it started, through a DM. Now why I want to talk about this is because I know a lot of people jinki love story ek DM से शुरू हुई है एंड आई एम पार्ट ऑफ दोज पीपल. माई लव स्टोरी ऑल्सो स्टार्ट थ्रू अ डीएम. माई हस्बैंड रीच्ड आउट टू मी ऑन एन इंस्टाग्राम डीएम. आई कनेक्टेड विद हिम ऑन इंस्टाग्राम. दैट इज हाउ वी स्टार्टेड चैटिंग विद ईच अदर. दैट इज हाउ वी मेट एंड दैट इज हाउ विद इन अ ईयर वी वर मैरिड. सो आई थिंक इंस्टाग्राम इज नाउ द न्यू, आप जो भी बोलते हो, डेटिंग ऐप. मेरे लिए इंस्टाग्राम पे ही सारी लव स्टोरी शुरू होती है. एंड इफ यू आर स्टिल समवन सिटिंग देयर थिंकिंग कि यार मेरा टर्न कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी, मुझे सही लोग क्यों नहीं मिल रहे, आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हो. इंस्टाग्राम पे बैठे रहो बस. किसी दिन रैंडमली अपना मैसेज रिक्वेस्ट फोल्डर खोल देना, उसी में आपका आशिक बैठा होगा जिसने आपको डीएम किया होगा और आपने उसको इग्नोर किया होगा. बट दैट इज हाउ लव स्टोरीज आर वर्किंग दीज डेज. इफ योर लव स्टोरी ऑल्सो स्टार्टेड विद एन इंस्टाग्राम डीएम, लेट अस नो ऑन आर डीएम विच इज 106.2 बिग एफएम. या आप मुझे कॉल कर सकते हो 800-106-2 पे.

0: नहीं नहीं आप तो खाम खा डर रही हैं, मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamu alaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
8: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out, or a message for someone special, send your name, space, your song name, and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2.
2: The beat of Bollywood.
8: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: Let's take a quick look on the roads. अगर आप शारजा की तरफ जा रहे हैं E311 लेकर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, आपको मिल जाएगा लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक स्टार्टिंग S12 शारजा रिंग रोड गोइंग अंटिल शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 13. एक 8 मिनट का वहां पर डिले. एक कार एक्सीडेंट हुआ है D93 नाहदा स्ट्रीट के पास. दिस इज गोइंग टूवर्ड्स अलखबैसी. उसके अलावा अगर आप नैफ रोड के पास है तो वहां पे भी रिग्गा एरिया से जाते हुए ऑन D89 मुस्तकबल स्ट्रीट आपको ट्रैफिक मिल जाएगा. एटलीस्ट अबाउट अ 10 मिनट डिले एक्सपेक्टेड ऑन दैट रोड इज वेल. एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो ऑन व्हाट्सएप व्हिच इज 0543091062.
8: Sia, Self Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो।
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: therapy uses heat or cold to destroy cancer cells. And astronomers have detected an atmosphere around a rocky Earth-like planet outside of our solar system that could have liquid water on its surface. That's all from the BBC World News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: गुड आफ्टरनून, 303 ऑन द बिग क्लॉक. शो का तीसरा घंटा हो गया है शुरू. शाम 5 बजे तक मैं आपके साथ. माय नेम इज ज़ोहरा. फिलहाल इस घंटे ऑन व्हाट्स द बिग डील. यार ऐसे बहुत बार होता है वी गेट रिकरिंग ड्रीम्स, या तो रिकरिंग भी नहीं हो, मतलब सपने आते हैं कुछ अजीब अजीब से. समटाइम्स यू फील लाइक हाँ ठीक है यार, रैंडम ड्रीम्स हैं, दे डोंट हैव एनी मीनिंग. बट नो, इफ यू थॉट दे डोंट हैव एनी मीनिंग, दे माइट जस्ट हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, एंड आपकी जिंदगी से ही रिलेटेड वो मीनिंग्स होंगे. सो वी गोना बी टॉकिंग अबाउट दोज वियर्ड ड्रीम्स एंड व्हाट दे एक्चुअली मीन्स. If you've been having these kind of dreams and you feel like you need answers, maybe you should just listen to me and you'll get all those answers. Let's kickstart the hour with this one from Bads of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: के आज शेर खुल गए। कभी कभी यार शेरों की बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमारी नींद जो खुल जाती है कुछ ऐसे ड्रीम्स देखकर, आई थिंक वी शुड रियली बी टॉकिंग अबाउट दोज राइट नाउ।
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बहुत सारे ऐसे सपने हमने देखे हैं एंड यू कैन नॉट टेल मी कि इनमें से कोई भी एक सपना आपने नहीं देखा है, बिकॉज 100% गारंटीड है वन ऑफ दीज ड्रीम्स यू डेफिनेटली हैड एट लीस्ट वंस। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ठीक है, नंबर वन, वो फीलिंग अभी आई है कभी आपको सोते वक्त कि आप गिर रहे हो, बिल्डिंग से गिर रहे हो, कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, आपका पैर यू नो हट गया वहाँ से एंड यू जस्ट फेल एंड यू कैन एक्चुअली फील लाइक यू आर फॉलिंग इन योर ड्रीम। हाँ, ये सबने देखा है, हमने भी देखा है, बट वी यूज टू थिंक यार इसका मतलब क्या होगा, रैंडम थॉट आ गया होगा। बट नो, अपेरेंटली इफ यू ड्रीम्ड ऑफ योर सेल्फ फॉलिंग, इट इज बेसिकली लिंक्ड टू फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड लूजिंग कंट्रोल। यू नो, किसी तरीके की अगर इनसिक्योरिटी आपको आ रही है, यू फीलिंग अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम्स, तब जाके ये सपने ज्यादा आने लग जाते हैं। यू विल रैंडमली सी योरसेल्फ फॉलिंग फ्रॉम प्लेसेस, फ्रॉम हाइट्स, दैट इज व्हाट इट बेसिकली मींस। उसके अलावा ऐसे भी सपने आपने देखे होंगे, यू बीइंग चेस्ड। ओ, मल्टीपल टाइम्स मैंने ये सपना देखा है, बीइंग चेस्ड बाय रैंडम थिंग्स, रैंडम ऑब्जेक्ट्स, रैंडम क्रीचर्स, रैंडम पीपल ऑल्सो। बट इफ यू ड्रीम्ड ऑफ योरसेल्फ बीइंग चेस्ड, इट इज लिंक्ड टू अवॉइडिंग अ प्रॉब्लम, fear or unresolved conflict. It is basically something that you need to sit and talk about. Confrontation aapko karna chahiye, but aap kisi cheez se bhag rahe ho, you're looking for an escape. That is when you start getting these kind of dreams. उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी बहुत कॉमन है। फैमिली वाले बहुत बोलते हैं, अरे मैंने ये देख लिया, सुनामी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। अगर नेचुरल डिजास्टर्स वाले सपने आपको आ रहे हैं, इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स इमोशनल टर्मोइल आपके लाइफ में। अगर कोई इमोशनल ऐसी कोई स्ट्रेस चल रहा हो, दैट फील्स लाइक कि आपका सब कुछ डिजास्टर्स चल रहा है, योर लाइफ इटसेल्फ इज फीलिंग लाइक दैट, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द नेचुरल डिजास्टर्स इन योर ड्रीम्स। यू नो, यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेसफुल एंड पावरलेस, तब जाके ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बींग लेट और मिसिंग अ फ्लाइट। ये मुझे कभी आया नहीं है, बट अगर आपको आया है दैट आप लेट हो गए, फ्लाइट मिस हो गई, इट्स बेसिकली लिंक टू वरीज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव, बेसिकली वरीज अबाउट अपॉर्चुनिटीज दैट यू मिस्ड, तब जाके वो फ्लाइट वाला कनेक्शन आ जाता है कि फ्लाइट छूट गई। दैट इन रियलिटी इज बेसिकली अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, कोई बहुत बड़ा मौका चांस लाइफ में मिस कर दिया, दैट्स वेन यू स्टार्ट गेटिंग दीज ड्रीम्स। तो अगर आपको भी ऐसे सपने आ रहे हैं, दीज आर द मीनिंग्स, डोंट थिंक दैट ये ना इसका कोई मतलब नहीं होगा, मे बी जस्ट सिट बैक एंड थिंक अबाउट इट दैट there are certain things that you need to do something about. Unresolved conflicts ho, confrontation ho, kisi se baat karna ho, wo karo, because only once you do that will you be able to overcome everything that's happening in your life and get rid of those dreams which you are feeling absolutely helpless about.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Where is your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip, posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island. Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E& Go for more.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: Every person here is a singer. मतलब इतना टैलेंट छुपा हुआ है, क्यों छुपा के रखना है? यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, giving you a chance to host your own concert every single evening. This is the big thrill and karaoke. गाड़ी में karaoke करने का मौका आपको मिलता है. Alright, Albina, your track is. हाय हाय, हम दुआ करते हैं कि आप और गाएं, आप और अच्छा गाती हैं। मैंने भी एक बार अपना बर्थडे कैरियोके बर्थडे पार्टी की थी एंड मेरी एक फ्रेंड ने माइक ही नहीं छोड़ा, हमें वो जगह छोड़नी पड़ी बिकॉज यू नो द गाय हैड टू कम इनसाइड दैट बूथ। आई एम नॉट इवन किडिंग एंड से प्लीज प्लीज लीव, आई डोंट वांट टू लूज बिजनेस बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सिंगिंग।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है एट 52% करंटली। फिलहाल टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। होपफुली आज इससे ज्यादा टेम्परेचर्स नहीं जाएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग लोज ऑफ अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग। एट द मोमेंट इट इज ब्राइट एंड सनी।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

सुपर ट्रैक सुन सोनिया हिमा सरदेसाई की आवाज ऑन द बिग मिक्स. फिलहाल 3:44 हो चुके हैं. वी हेडिंग इनटू द लास्ट आवर ऑफ द शो. आखिरी घंटे में आई प्ले विथ यू नेम प्लेस मूवी थिंग एंड इफ यू वांट टू प्ले ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल मी 800-1062. दैट्स आवर टोल फ्री नंबर. कॉल करो अगर खेलना चाहते हो. ये हम खेलने वाले हैं अगले घंटे में एंड वी गोना मेक श्योर साथ ही साथ म्यूजिक ऐसा चलता रहे दैट पुट्स यू इन द राइट मूड बिकॉज इट्स द वीकेंड एंड ऑब्वियसली वीकेंड पे किसी को बोर तो नहीं होना. तो गाने तो चलेंगे ही, साथ ही साथ गेम भी खेलो, मजा बहुत आएगा.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, 4:06 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 92. The beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: Missed your morning buzz?
8: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो।
9: क्या कुछ धांसू प्लान किया हुआ है वीकेंड पर?
10: धांसू प्लान किया तो नहीं अभी तक, बट क्योंकि फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट सोच रहा हूँ कि कुछ देखे इस बार, क्योंकि अर्जेंटीना का जो चल रहा है ना, मुझे नॉलेज नहीं है फुटबॉल का इतना, क्रिकेट का है, फुटबॉल का नहीं है, बट सोच रहा हूँ कि उसमें जाके थोड़ा देखने का मन करता है।
9: तो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना, इसीलिए यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेक अ प्रेडिक्शन, क्योंकि क्या है कि आपका कोई फेवरेट टीम नहीं है। तो क्या लगता है आपको, अगर मैं आपको दो दो नाम बताऊं, स्पेन अर्जेंटीना?
10: मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि अर्जेंटीना फाइनल में जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना जीतेगी जीतेगी।
9: क्या बात है, आपको आइडिया ही नहीं कितने देसी लोग आपको कह रहे हैं, आपके मुंह में घी शक्कर। आई एम स्टिल टू फिगर आउट, मतलब ये पूरा जो फीफा का वर्ल्ड कप चला है ना, मेरा हमेशा से क्वेश्चन था ऑल द देसीज कि हम लोग अर्जेंटीना को क्यों इतना सपोर्ट करते हैं भाई। मतलब आई थिंक ब्राजील भी इट कम्स नोवेयर क्लोज कि जितना फैंडम अर्जेंटीना का है, एंड आई थिंक मेसी, मैराडोना, देव गॉट दीज सुपरस्टार्स, उसकी वजह से काफी पागलपन है अर्जेंटीना का।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली,
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: गरम गरम, बहुत ही गरम सा मौसम, 38 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी काफी हाई एट 51% राइट नाउ, हाईज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। आज शाम टेम्परेचर गिर गिर के सिर्फ पहुंचेगा 33 तक, बस गर्मी कम नहीं होने वाली।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो।
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Bilkul sahi, 420 on the Big Clock. Zohra ke saath ho aap right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. And 420 agar ho chuke hain, you know that it is time. It is time for...
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: बिल्कुल सही, इट्स टाइम फॉर नेम प्लेस मूवी थिंग. आज हमारे साथ खेलने वाले हैं ये गेम आनंद. हाय, हाउ आर यू?
3: हाय ज़ारा, आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: आपसे बात करके बहुत आनंद मिल रहा है मुझे. यू हैव अ वेरी हैप्पी हैप्पी वॉइस. व्हाट डू यू डू आनंद?
3: आई वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर आईटी कंपनी.
1: अरे इतनी बोरिंग सी जॉब की इतनी कलरफुल पर्सनैलिटी.
3: अच्छा,
1: ये सब यही बोलने की कोशिश करते हैं खुद को तसल्ली देने के लिए. नो नो यार, यू सीम लाइक अ फन पर्सन. एंड आर यू गुड एट बॉलीवुड एज वेल?
3: I think so. I am. Let's see.
1: ये कॉन्फिडेंस तो नहीं नजर आ रहा मुझे, बट ओके इफ यू थिंक सो. चलो यार, इट्स अ वेरी फन गेम. इफ यू प्लेड नेम प्लेस एनिमल थिंग तो दिस शुड बी इजी, क्योंकि इसका एक बॉलीवुड वर्जन हम खेलेंगे. ओके, फोर कैटेगरीज, यू नीड टू आंसर विद इन 5 seconds फॉर ईच कैटेगरी. एक लेटर मैं आपको देने वाली हूँ उससे. ओके
3: ओके.
1: चलो हम दो राउंड खेलेंगे, बिकॉज मुझे आपके कॉन्फिडेंस से ऐसा लगा नहीं कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप बोल तो रहे हो. सो आई विल स्टार्ट विद एन इजी राउंड फॉर यू. अगर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आप में कॉन्फिडेंस है, तो हम कॉन्फिडेंस बढ़ा के डिफिकल्ट राउंड खेलेंगे. ओके, चलो. द फर्स्ट राउंड, द लेटर दैट आई एम गिविंग यू इज द लेटर बी. बी फॉर बच्चा, है ना? तो बी से आपको बताना है मुझे बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो.
3: बॉबी देओल.
1: वेरी गुड. बी से मूवी.
3: बेताब.
1: हाँ जी. बी से बताओ प्लेस.
3: बैंकॉक.
1: अब बी से बताओ थिंग.
3: बुक.
1: वेरी गुड, समझ आ गया. गेम इजी लगा?
3: जी इजी.
1: थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं अभी?
3: प्लीज.
1: प्लीज बोला, ज्यादा डिफिकल्ट करेंगे. चलो अब मैं आपको लेटर दे रही हूँ, लेटर यू. यू से बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो.
3: ओके, उर्मिला मातोंडकर.
1: अब यू से बताओ मूवी.
3: ओके, ये मुश्किल है.
1: जल्दी. क्या यार,
3: आई नो काफी होंगे बट एकदम नहीं आ रहा ज़हन में अभी.
1: यू मी और हम थी. आई कैन थिंक ऑफ वन नेम. देयर इज आल्सो, देखो यार, एटलीस्ट एक मूवी तो याद आ गई मुझे.
3: ओल्ड मूवी.
1: हाँ हाँ, आई थिंक उड़ान. नहीं, उड़ान है. थी
3: हाँ, उड़ान
1: थी ना मूवी. हाँ तो क्या यार, अभी आपको सूझ रहे. चलो यार, मूविंग ऑन. यू से बताओ प्लेस.
3: अरे
1: वेरी गुड, वेरी गुड. अब यू से बताओ थिंग. ये तो सबको पता है, बचपन में यही तो आता था. यू से और किसी को कोई थिंग आता ही नहीं है. अच्छा, अम्ब्रेला के बिना, अम्ब्रेला के अलावा मुझे यू से कोई थिंग बताओ.
3: यूटेंसिल, आई गेस.
1: नो, दैट्स अ कैटेगरी. नहीं यार, बट यू प्लेड रियली रियली वेल. आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट कर दिया आपके लिए यू देख के. But you are good at this game. यार आपसे बात करके बहुत मजा आया. It was super fun talking to you. And you have a great, great weekend ahead, है ना?
3: Okay. You too.
1: Thank you, Anand.
3: Bye. Thank you for calling. Bye.
1: कितने professional, जैसे script हो इनके सामने. Thank you for calling. It was great speaking to you. मतलब रटा हुआ होता है इनको ये script. But such a sweet voice to talk to. Yes, this is Name Place Movie Things. Very, very fun. Very, very simple लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है क्योंकि आंसर्स नहीं आते टाइम पे. इफ यू थिंक यू आर अ प्रो एंड यू'd लाइक टू प्ले, ऑल यू हैव गॉट टू डू इज कॉल मी 800-1062. दैट्स अ टोल फ्री नंबर.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली
1: स्लोली। The Big Mix brought to you by insurancemarket.ae.
2: Insurancemarket.ae.
3: 3, 2, 1, and they're off. It's your OffDG's exclusive bundle offer. New wheels, big screens. Get a Geely car plus TCL 65-inch TV from 42,999 dirhams. Drive home your new M Grand or City Ray today. Book now for just 4,999 at your OffDG. TNCs apply.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
5: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बहुत हो गया पिछले
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: It's hot it up with big tickets.
5: I guarantee 20 million dirham grand prize.
4: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: भाई वो कुछ 2-4,000 रुपए की जरूरत थी अपने.
8: दो या चार.
7: चार.
8: कब तक वापस आएगा?
7: यूं ही यहीं. चार पांच दिन में.
8: चार या
7: पांच. पांच.
9: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
1: द बिग बिंज विद सिड. सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: ट्रैफिक बढ़ता हुआ अगर आप E311 लेकर जा रहे हैं शारजा की तरफ शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, अभी से आपको मिल जाएगा हैवी ट्रैफिक ओवर देयर. ये शुरू हो रहा है फ्रॉम वर्का 1 गोइंग ऑल द वे अंटिल S112 मलीहा रोड. वहां पे मॉडरेट से हैवी ट्रैफिक, अबाउट एन 18 मिनट डिले एक्सपेक्टेड ऑन दैट रोड. उसके अलावा D80 सलादीन स्ट्रीट अगर आप जा रहे हैं होरल अंस की तरफ तो वहां पे कार एक्सीडेंट की वजह से आपको मिल जाएगा एक 8-10 मिनट का डिले. द यूजुअल बंपर टू बंपर ट्रैफिक ऑन E44 अलखेल रोड D3 के पास. ऑल्सो एक छोटा सा कार एक्सीडेंट अलकूज फर्स्ट के पास हुआ है which is causing about a 7-minute delay. Any other update, you can let us know on our WhatsApp 054-309-1062.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

भाग रही हूँ यार, भाग ही रही हूँ यहाँ से. मेरा भी वीकेंड हो गया है शुरू. इट्स ऑलमोस्ट 5 PM. दैट्स माय टाइम टू टेक योर लीव. इफ यू एंजॉय द शो, शो अस सम लव यार ऑन आवर इंस्टाग्राम. दैट्स 106.2 FM. फॉलो कीजिए, वहाँ पे अपना लव सपोर्ट सब कुछ दिखाइएगा. ऑल्सो मेरी आवाज़, मेरा अंदाज, अगर आपको पसंद आया हो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. ज़ोहरा अमीन इज माई हैंडल ओवर देयर. आई विल नाउ सी यू ऑन अ संडे 3 to 6 PM विद द बिग रेकमेंड्स, ब्रिंगिंग यू द बेस्ट रेकमेंडेशंस फ्रॉम टाउन. सो मेक श्योर टू ट्यून इन. अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे tuned to Big 106.2. This is the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग टाइम राइट नाउ 5:07।
2: Bollywood.

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
4: नमस्ते।
5: ओला।
4: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
8: It's hotted up with big tickets.
9: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
8: 500,000 dirham winners. And 1 million dirham big spin game.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
11: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out, or a message for someone special, send your name, space, your song name, and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
14: इट्स 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 32। फिलहाल ह्यूमिडिटी आज ठीक ठाक है, फिलहाल ऑन 53%।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. This is The Big Thrill. Friday ki sham hai. We're bringing in the weekend while you're heading home. Every single evening, talent aapka, concert aapka, audience meri. We do the karaoke. Hum sab ke andar kahin Kumar Sanu, Sonu Nigam, अलका याग्निक, आशा भोसले जी छिपी हुई हैं, उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है. सुर लगे या ना लगे, दिल लगना चाहिए, माहौल बनना चाहिए.
1: Karaoke.
2: While you're stuck in the traffic jam, we jam and it's the weekend. So, आज गाना भी वीकेंड वाला है. LMEC कितनों को ये ट्रैक याद है?

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, bringing in the weekend. Main hoon Mansi. While you're heading back home, hum yahan mehfil jamate hain with the karaoke. Joining us is Afzal. Hi Afzal, kaisa raha aapka Friday?
2: All well.
1: क्या किया आज? जल्दी घर आए कि अभी भी रास्ते में हो?
2: अभी भी रास्ते में हूँ.
1: अरे रे रे रे, वीकेंड के कोई प्लान है कि बस कपड़े धोने हैं घर पे, ग्रोसरी करनी है? आई थिंक एज एडल्ट हमारा प्लान यही होता है वीकेंड का.
2: तो कल सुबह फिर ऑफिस जाने का. इसके लिए
1: ये कौन सा ऑफिस है जो आपको सैटरडे को भी बुला रहा है?
2: हमारा ऐसे ही है मेरा.
1: ये देखो, जितने भी लोग इस वक्त कह रहे ना है हमारा ऑफिस ऐसा है, अगर आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, बी ग्रेटफुल. अफजल को कल ऑफिस जाना है. फिलहाल विल नॉट थिंक अबाउट टुमारो, विल थिंक अबाउट फ्राइडे नाइट. अफजल, आप गाना गाने का शौक रखते हैं? ये तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बस आज शाम तो यही जीत के जाने वाले हैं कैरियोके किंग का खिताब. तो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बिकॉज ही सीम्स वेरी प्रिपेयर्ड, हम करते हैं
0: कैरियोके.
1: ऑलराइट अफजल जी, आपका ट्रैक है

0: तो मैं जरा
1: लड़की
0: है
1: या है जादू,
0: खुशबू है या नशा।
1: हो गया
0: सुबह आए तो फुलके में देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा।
1: वो नॉट बैड, थोड़े से लिरिक्स जो है वो इधर उधर हो गए थे, बट गाया आपने ठीक ठाक है, नॉट बैड एट ऑल। लिरिक्स याद नहीं रहते क्या आपको गाने के?
0: इधर उधर हो जाते हैं।
1: हाँ, I am the queen of missing lyrics and messing up lyrics, but not bad. Afzal, someone who has to work on Saturday, I like the energy. आपने अच्छा गाया। फिलहाल कोई LinkedIn विंकडन पे एक्टिव हो के नहीं हो कि हर सैटरडे ऑफिस जाओगे?
0: LinkedIn तो एक्टिव नहीं हूँ।
1: नहीं हो तो फिर कहाँ से मिलेगी नई नौकरी? चाहिए नहीं चाहिए? हमारी शाम की महफिल एंड यू सैंग रियली रियली वेल। बाय। दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल इवनिंग, इट्स कारियोकी। अगर आप भी गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, आठवां नहीं तो 18वां सुर लगाना चाहते हैं, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
2: कारियोकी 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Roof Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Bringing in the weekend, this is the big thrill, Mansi. And of course, yahan pe hum gana ga rahe hain. In fact, aap ga rahe hain. Main jo hai aapko audience deti hoon with the karaoke.
2: Karaoke.
1: So, आपके बाथरूम सिंगर को हम प्लेटफॉर्म देंगे, होस्ट योर ओन कॉन्सर्ट, टैलेंट आपका, ऑडियंस मेरी. अगर आपको भी लगता है कि आप कैरियोके कर सकते हैं, 800-1062 इज द नंबर टू डायल. गाने से याद आया, इस गाने ने सोशल मीडिया पे तबाही मचा रखी है. द सॉन्ग फ्रॉम टॉक्सिक, व्हाट अ ब्रिलियंट गाना, वेरी बेख्याली काइंड ऑफ वाइब्स. विशाल मिश्रा एंड राजशेखर टुगेदर. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2026. तीन बार ये पोस्टपोन हो चुकी है. टॉक्सिक अ फेरी टेल for grown-ups. And of course, grown-ups ki fairy tale toxic hi hoti hai. Directed by Geetu Mohandas. Stellar cast, I must say. Nayantara, Huma Qureshi, Kiara Advani, Tara Sutaria, and saath mein Yash. So finally, the movie is releasing on the 26th of August in Hindi and in Kannada here in the UAE. Can't wait. The song is ruling the box office. A lot of people have a lot of things to say about the video, but I have to say they're actors and they're just doing the job. Brilliant gana hai, playing it right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi with The Big Thrill. We're bringing in the weekend with a live concert that you are hosting every single evening. 5-6 we do the karaoke while you're stuck in the traffic jam. We jam. We've got Hassan, jinhone kitne sare messages WhatsApp pe bheje hain. Mujhe samajh mein aata hai WhatsApp free hai, but aapne to matlab back to back kam se kam 50 message bheje hain. To kya aap bahut acha gaate hain Hassan?
2: Nahi, main bahut acha nahi gaata. Good evening, thank you so much for picking me up. Aisa nahi hai, matlab bas gungunaa lete hain. लेकिन ये कि मुझे आई वॉज नॉट श्योर कि मैं सही मैसेज कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि आप लोग जब भी बोलते हो इतना जल्दी में बोलते हो मैसेज मी लाइक दिस, तो आई वॉज कंफ्यूज, दैट्स व्हाई मैं बार बार उसको रेक्टिफाई करके मैसेज कर रहा था.
1: बट अब से मैं स्लो बोलूंगी कि अगर आप भी हसन की तरह कार्योकि करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, एक भी करेंगे काफी है. 0543091062 पे. यू कैन आल्सो गेट इन टच विद अस ऑन इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम. सो क्या प्लान्स फॉर द वीकेंड हसन?
2: वीकेंड अभी हमारा तो नहीं है, कल स्टार्ट होगा इंशाल्लाह.
1: नहीं, हमारा तो भी कल ही स्टार्ट होगा, बट हो ही गया है ऑलमोस्ट. अब तो बजने वाले हैं.
2: बस प्लान्स यही है, थोड़ा फैमिली के साथ घूमेंगे फिरेंगे, कहीं जाएंगे इंडोर किसी जगह पे, आउटडोर जाने वाला बिल्कुल मौसम नहीं है.
1: हाँ, गर्मी तो काफी है फिलहाल. आप पार्टी वार्टी में जाते हो, फैमिली गेट टुगेदर्स में तो गाना वाना गाते हो? लोग बोलते हैं कि हसन आया है तो अब तो माहौल बनेगा.
2: नहीं,
1: क्या चाह रहे हो हसन, कि यहाँ से लोग चले जाए?
2: नहीं, अब इतना भी नहीं है, इतना तो भरोसा है खुद पे और आप पे.
1: नहीं, मुझ पे भरोसा तो मुझे खुद नहीं है, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लोग जो है गाड़ी में इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं वो बोले कि नहीं नहीं यार कानों से दर्द बाहर आ गया. बट फिलहाल हम देखेंगे. ट्रैक आप को सुनाती हूँ मैं. शाहरुख खान का गाना है एंड कर रहे हैं कारियो की हसन साहब. कारियो की

0: छू के मैं देखूं जरा रुक जा
1: दिल दीवाने
0: हाय लाज रख ली है। अच्छा गाया है हसन, अच्छा गाया है।
1: किस
0: लड़कियों के लिए गाना गाया आपने?
1: नहीं, मैंने लड़कियों वड़कियों के लिए नहीं, बस वैसे ही मैं थोड़ा मूडी टाइप का हूँ, जब मूड होता है गुनगुना लेता हूँ। फैमिली भी साथ होती है तो फिर भी गाता रहता हूँ, कभी जब मूड होता है तो, ऐसा कोई वो नहीं है।
0: वेरी नाइस, आपको और गाना चाहिए, आप में है सुर, आप में है टैलेंट, मैं कह रही हूँ गाते रहो, मजा आया। थैंक यू सो मच हसन, यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड।
1: सेम टू यू, सेम टू यू, थैंक यू, बाय बाय।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Happy, happy Friday. Bringing in the weekend, main hoon Mansi. In fact, reminding you for the very last time, agar aap ek family staycation pe jana chahte hain, the big summer surprises it is. Agar abhi tak register nahi kiya hai, do it right now. All you need to do is just send us a WhatsApp. BSS, your full name, to 0543091062. This out of the show, we play this fun game. It's called the 5 second rule. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ categories. तीन चीजें बतानी होती हैं 5 second के अंदर. हमेशा कहती हूँ, it sounds easy, but जब आप यहाँ game खेलोगे, आपको समझ आएगा इतना आसान है नहीं. और आज शाम की एक कमाल research ये है कि 59% लोग जब रात को अपने बेड पे जाते हैं, डूम स्क्रोलिंग तो करते हैं, वी वॉच रैंडम रील्स, हम रैंडम शॉपिंग भी करते हैं, थिंग्स दैट वी कीप एडिंग टू आवर कार्ट, वी रैंडमली बाय इन द मिडल ऑफ द नाइट, एंड आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड. मोर ऑन दिस रिसर्च व्हेन आई कम बैक. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
1: बिग

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: There's an excitement in the air. The whole city's waiting for the big match to start. And that's when Papa John's Pizza Tower makes the night complete. Three pizzas and sides, all in one towering box, in three sizes. Plus ice-cold Coke, enough for everyone. Order now on the Papa John's app. Papa John's, better ingredients, better pizza.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&. Go for more.
0: Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा।
0: ये सुनो,
4: क्या कुछ धांसू प्लान किया हुआ है वीकेंड पर?
5: धांसू प्लान किया तो नहीं अभी तक, बट क्योंकि फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट सोच रहा हूँ कि कुछ देखे इस बार, क्योंकि अर्जेंटीना का जो चल रहा है ना, मुझे नॉलेज नहीं है फुटबॉल का इतना, क्रिकेट का है, फुटबॉल का नहीं है, बट सोच रहा हूँ कि उसमें जाके थोड़ा देखने का मन करता है।
4: तो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना, इसीलिए यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेक अ प्रेडिक्शन, क्योंकि क्या है कि आपका कोई फेवरेट टीम नहीं है। तो क्या लगता है आपको, अगर मैं आपको दो नाम बताऊं, स्पेन अर्जेंटीना?
5: मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि अर्जेंटीना फाइनल में जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना जीतेगी।
4: क्या बात है, आपको आइडिया ही नहीं कितने देसी लोग आपको कह रहे हैं, आपके मुंह में घी शक्कर। आई एम स्टिल टू फिगर आउट, मतलब ये पूरा जो फीफा का वर्ल्ड कप चला है ना, मेरा हमेशा से क्वेश्चन था ऑल द देसीज कि हम लोग अर्जेंटीना को क्यों इतना सपोर्ट करते हैं भाई। मतलब आई थिंक ब्राजील भी इट कम्स नोवेयर क्लोज कि जितना फैंडम अर्जेंटीना का है, एंड आई थिंक मेसी, मैराडोना, देव गॉट दीज सुपरस्टार्स, उसकी वजह से काफी पागलपन है अर्जेंटीना का।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM, द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: इट्स 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 52% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Sia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड का माहौल है. वी आर प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. जॉइनिंग अस इज अरीब. हाय अरीब.
2: हेलो,
1: कैसे हैं? कैसा रहा ये वीक आपका?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वीक तो बहुत अच्छा रहा, बस गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है.
1: ये तो हम हर साल बोलते हैं, बट अरीब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, वो कहता है कि 59% लोग जो है देर रात तक जब जागते हैं, यू नो व्हेन यू आर इन योर बेड, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, यू एंड अप बाइंग रैंडम थिंग्स. तो आप करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग?
2: वो तो कभी भी कर लेते हैं, रात का जरूरी थोड़ी है.
1: अरे कभी भी कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आधी रात को जब आप बोर हो रहे हो तभी करें, आप दिन में भी ये कर लेते हैं.
2: बस जब भी आते हैं खोलते हैं कुछ ना कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं.
1: हाँ, ये आई थिंक ये सबको ऐसा चस्का लग गया, हम सब अडिक्टेड है ऑनलाइन शॉपिंग से.
2: बस ये एप्लीकेशन ने तंग कर दिया सबको, बस आदत लग गई है.
1: एप्लीकेशन ने तंग कर दिया. सबसे फालतू चीज क्या मंगाई आज तक आपने रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग से?
2: याद नहीं है, बहुत सारी फालतू चीजें मंगवाई है. एक तो नहीं है, पता नहीं क्या क्या मंगवाया था, अभी तो ध्यान में भी नहीं आ रहा एकदम. स्क्रीन मैग्नीफायर पता नहीं क्या मंगवा लिया.
1: स्क्रीन मैग्नीफायर
2: जी, वो अजीब अजीब चीजें आती है ना पे, तो मैं
1: वेरी नाइस. आपको पता है ना वो अजीब चीजें फ्री में नहीं आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है हम कितनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं, थिंग्स दैट वी डोंट नीड. आई थिंक दैट इज व्हाट ऑनलाइन शॉपिंग इज. दो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बट आई एम ऑल्सो अडिक्टेड, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है. अरीब आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द वेरी बेस्ट.
2: Thank you.
3: 5 second rule. Oh yeah.
1: 3 अक्षय कुमार की मूवीज.
2: अच्छा खिलाड़ी.
1: हाँ. अरे रे रे रे रे, कच्चे खिलाड़ी तो आप लग रहे हो मुझे. मतलब 5 सेकंड फटाफट खेलना है, ठीक है? 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम आता है.
2: हम दिल से कह रहे हैं, हम तुम्हारे हैं सर, हम और हम किसी से कम नहीं.
1: वेरी नाइस. 3 चीजें जो आप उठा लेते हैं होटल रूम से.
2: टिश्यू, टॉवल और वो सॉक्स.
1: क्या सॉक्स?
2: सॉक्स सॉक्स देते ना बोलो, तो वो भी.
1: सॉक्स कौन सा होटल आपको दे रहा है?
2: वो देते ना वो वॉशरूम जाने के लिए.
1: वो बाथरूम स्लीपर्स.
2: स्लीपर्स होती है, मैं एक होटल में गया था, वो सॉक्स भी मिले थे मुझे.
1: किसी और पुराने कस्टमर के होंगे. अरीब आपने फ्री समझ के उठा लिए.
2: तो वो कबाड़ में रखे हुए थे.
1: 3 ऐसी चीजें दैट आर येलो इन कलर एंड आप खा सकते हैं.
2: अच्छा, मैंगो आइसक्रीम और
1: कौन सी आइसक्रीम?
2: मैंगो आइसक्रीम.
1: अच्छा, टाइम खत्म. मैंगो, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो शेक, मैंगो रस, ऐसा नहीं होता, अलग अलग बताना होता है. 3 बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर्स जिनका नाम एस से शुरू होता है. अच्छा खेल रहे हो पर अटक जाते हो. 3 थिंग्स दैट यू कैन मेक विद मिल्क एंड शुगर.
2: कस्टर्ड, मिल्क शेक,
1: खीर, रबड़ी, कुल्फी, बहुत कुछ है. बट नॉट बैड अरीब, पहली बार के हिसाब से आपने काफी अच्छा खेला है. कुछ आंसर्स टाइम पे भी आए हैं, कुछ इधर उधर हो गए, बट आई होप आपको मजा आया.
2: बहुत मजा आया.
1: थैंक यू सो मच अरीब, हैव अ ग्रेट वीकेंड. क्या फालतू चीज खरीदनी है इस वीकेंड?
2: नहीं नहीं, अब इस वीकेंड नहीं खरीदी. कोशिश करो कि अभी सेविंग हो जाए थोड़ी.
1: सभी यही कोशिश करते हैं, बट सडनली वो नोटिफिकेशन आते हैं ना, सिर्फ 1 घंटे का डिस्काउंट, फिर ये, फिर वो, तो बंदा जो है वो लालच में आ जाता है. फिलहाल यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, ठीक है?
2: थैंक यू, बाय.
1: या 5 सेकंड रूल आपने खेलना है, तो एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पे.

0: बहुत ही स्लो मूविंग है फिलहाल 20 मिनट डिले ऑन शेखजाद एज वेल बिजनेस बे डीआईएफसी ऑल पैक्ड देयर इज हेवी ट्रैफिक नियर अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया प्लस सिटी सेंटर मर्डिव से इफ यू गोइंग टुवर्ड्स इतिहाद मॉल फिलहाल 20 से 25 मिनट का डिले आपको वहां भी मिलेगा ट्रैफिक इज काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल अगर आप फहीदी के पास हैं एंड गोइंग टुवर्ड्स डेरा एंड अबूहेल अगेन इट इज वेरी वेरी स्लो मूविंग एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर
1: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2.

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: The weekend is here. When I come back, your chance to win a family staycation. Yes, it's time for the big summer surprises. If you haven't registered yet, do it right away. 0543-091-0062 WhatsApp number. Is it WhatsApp? Karna hai. यहाँ नंबर नहीं लग पाया, डोंट वरी, है टू आर इंस्टाग्राम पेज, वहां से डायरेक्ट एंट्री आपको मिल सकती है 106.2 बिग एफएम. फिलहाल इट्स द वीकेंड एंड लेट मी सजेस्ट यू अ ब्रिलियंट प्लेस जहां पे यू विल गेट 4 इनक्रेडिबल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस ऑल अंडर वन रूफ. आई एम टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट ताज दुबई. Soak in breathtaking Dubai skyline views and the vibrant nightlife at the Treehouse. If you love bold Asian flavors, then Miss Tess it is. And for contemporary Indian cuisine, definitely check out the Bombay Brasserie. Catch up with your friends, enjoy your favorite beverages at the Eloquent Elephant, and don't miss the After Dark brunch at Miss Tess every Saturday from 7 until 10:30 p.m. So there's something for everyone. Definitely spend your weekends at the Taj Dubai.
0: Big 106.2.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: गुड इवनिंग. फ्राइडे की शाम है, वीकेंड का माहौल है, बट फिलहाल यहाँ पे फैमिली स्टेकेशन जीतने का आखिरी मौका आपके पास है फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड, डू इट राइट हियर राइट नाउ. बीएसएस योर नेम टू 0543091062. इन जस्ट अ बिट आई विल रन द रैंडमाइजर. दो लोग यहाँ पे एक मुकाबला करेंगे. द कॉन्टेस्ट इज वेरी वेरी सिंपल. आई विल बी प्लेइंग यू सॉन्ग्स रिलेटेड टू हॉलीडे, टू ट्रैवल. आपने सिर्फ गाना गेस करना है. अगर फिल्मी नॉलेज, बॉलीवुड गानों की नॉलेज आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी है, दिस इज गोना बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. बट ये सब करने के लिए रजिस्टर करना जरूरी है. अगर आप जीतते हैं ये गेम, आपका नाम ड्रॉ में जाता है फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. प्लस यू आर आल्सो वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड एफएनबी वाउचर्स. सो गेट सेट व्हाट्सएपिंग.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: Bollywood.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: This football season, enjoy every single match live at the Huddle Bar Dubai. The Huddle Al Barsha in Brewhouse, the official fan zones of the World Cup. Expect special World Cup menus and happy hour deals with select beverages from 24 dirhams. If that doesn't make you scream, they're broadcasting games past 3 a.m. For more information, follow at the Huddle UAE and at Brewhouse DXB on Instagram. Terms and conditions apply.
2: Ready for an upgrade? Drive home your dream SUV with incredible offers from Jetour UAE. Buy now, pay in 2027, VAT on us, or 0% interest. Plus, enjoy a 1 million kilometer warranty. Get up to 10,000 dirhams cash back and free insurance on select models. With monthly installments starting from just 966 dirhams, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. TNCs apply.
4: The Big Mix miss kiya gaya.
5: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
6: Hi Nikhil, how are you?
7: Hi, hi, hi Zora.
6: इतनी बार hi बोल दिया। Hi, hi, hello, hi.
7: तो पहली बार बात कर रहा हूँ ना, किससे बात होती रही
6: है? अरे, मुझसे पहली बार बात कर रहे हो, मैं क्या intimidating लग रही हूँ आपको? नहीं ना?
7: नहीं,
6: इतनी sweet सी तो आवाज है मेरी। ऐसे जब मैं इंसान आगे से बोल रहा होता है तो मतलब दैट्स अ क्यू फॉर यू टू कॉम्प्लीमेंट, आप कर ही नहीं रहे हो मतलब।
7: तो वैसे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट और है मैम।
6: ओहो, प्लीज गो अहेड।
7: वो मस्तला गाना है ना जो नया रिलीज हुआ है।
6: हाँ जी।
7: उसका वो सिंगर का वॉइस और आपका वॉइस 101% मैच।
6: व्हाट आर यू सेइंग?
7: हाँ मैम, सीरियसली मैंने कितने बार सोचा कि फोन करूं पर टाइम नहीं मिला। अभी मैंने सोचा कि आज मैं बोल ही दूं आपको।
6: अरे व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट यार निखिल। अच्छा, कैन यू कंप्लीट द सॉन्ग फॉर मी?
7: कौन सा वाला?
6: ये सुनो। आज की रात मजा हो उसका,
7: आज की रात मजा ली।
6: ये नहीं करना चाहिए था मुझे, आंसर देने के बाद चुपचाप फोन रख देना चाहिए था।
8: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: There is big traffic if you're on Mankhool Karama Udmetha side. बहुत ही slow moving traffic है, heavy traffic near Fahidi, still Abuhail, Dera all packed. Though not really bad if you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed Merv to Mohesna, आपको हल्का पुल्का traffic मिलेगा, gets better post that. There is also some traffic that I see if you are on the Dubai Design District, a 15 to 20 minute delay if you're on Sheikh Zayed near DIFC Business Bay, and थोड़ा बहुत traffic at the moment if you're around Dubai Motor City. Anything else you'd like to report बताइए 801 062 पे।
8: Sia, self drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: ए बुड्ढे,
1: नमस्ते।
0: पहले आप आदत कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए,
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Thrilling, exciting family staycation waiting for you right here. Time for the big summer surprises where you can chill by the pool, beat the heat in style, apni family ke saath quality time spend karo, acha khana khao, stunning property hai. Rixos Almarid and Russell Khema, and all of this absolutely free when you send us a WhatsApp, BSS your name to 054-309-1062 to register. And we've got our randomizer doing the job, doing the work, and do naam dhoond nikale hain, Shivani and अहमद. गुड इवनिंग.
2: हाय, गुड इवनिंग.
1: गुड इवनिंग शिवानी. तो आई थिंक जब से हमने ये शुरू किया है तब से शी इज बीन ट्राइंग एंड फाइनली आज रैंडमाइजर हैज पिक्ड हर.
2: यस.
1: हाय हाय, कोई बात नहीं. अगर आपका भी नंबर यहाँ नहीं लगता है, इंस्टाग्राम से लग जाएगा. यू कैन गो एंड चेक अस आउट देयर 106.2 बिग एफएम. क्या प्लान शिवानी जी वीकेंड के?
2: अभी तो कुछ नहीं है, बट लेट्स सी, कुछ अच्छा बन ही जाएगा.
1: This is the attitude. कुछ अच्छा बन ही जाएगा. और कुछ ना भी बने तो आई थिंक घर पे रहना इज द बेस्ट प्लान एवर, है ना अहमद?
2: Netflix एंड ब्लिंग.
1: आप क्या करने वाले हैं अहमद? घर पे रहेंगे, पैसे बचाएंगे कि बाहर जाके खर्चा करेंगे?
3: बच्चों के हॉलीडे चल गए हैं.
1: अरे तो आप तो चाह के भी नहीं बचा पाओगे. हाँ,
3: घूमने लेके जाएंगे बच्चों.
1: वही ना, आप तो चाह के भी सेविंग नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि बच्चे घर पे, उनकी मम्मा भी हैं साथ में. फिलहाल आप दोनों को मैं मौका दे रही हूँ टू विन. इनफैक्ट अभी तो आप जीतेंगे ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स, एंड साथ में आपका नाम जाएगा ड्रॉ में फॉर दिस अमेजिंग फैमिली स्टेकेशन. वेरी वेरी सिंपल, हम यहाँ पे आपको कुछ गाने सुनाने वाले हैं जो ऑफकोर्स आर रिलेटेड टू वेकेशन, टू हॉलीडे, शॉर्ट अराउंड बीचेस, अराउंड यू नो ब्यूटिफुल लोकेशंस. आपने सिर्फ गाना गेस करना है. तो शिवानी, कितनी अच्छी है आपकी गानों की नॉलेज व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड?
2: अच्छा है.
1: मतलब अहमद को डरना चाहिए.
2: ऐसा लग रहा है कर लूंगी मैं.
1: हाँ, तो अहमद को डरना चाहिए मतलब. अहमद सुन लिया ना, कड़ा मुकाबला है. बट जवाब देने के लिए आपको पहले बोलना है बिग अहमद, बिग शिवानी, एंड देन आई विल आस्क यू टू आंसर. अगर आपने डायरेक्टली जवाब दे दिया तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे. ठीक है?
2: ओके.
1: ऑल द वेरी बेस्ट. इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस.
0: पार्टिसिपेट इन समर सॉन्ग कॉन्टेस्ट and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: All right, Shivani and Ahmed, aaj sham pehla gana hai.
2: Big Shivani.
1: Haan ji.
2: Ghungru toot gaye.
1: Bilkul galat jawab. Ghungru toot gaye, galat jawab. Ahmed, you want to try?
3: No.
1: पहले कह दिया नो. शिवानी, यू वांट ट्राई अगेन? क्या? एक सेकंड पहले शिवानी को, शिवानी को जवाब देने दो. हाँ, आप क्या गा रही थी?
2: कैसे बोले दिया
1: जाए. अरे अरे अरे अरे, गाना आपने ऑलमोस्ट पहचान लिया, बट बहुत लेट पहचाना है. और ये वो आनी है, ये एक जुनून है फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो चलो भाई, दोनों ही जवाब नहीं दे पाए, अब दूसरा गाना सुनाते हैं और जोर से फटाफट जवाब देना है. ठीक है? हाँ,
2: तुम ही हो बंधु कॉकटेल.
1: बिल्कुल सही जवाब. 1 point goes to शिवानी. Chalo, I'm going to play you another song here. Karishma Big Kapoor, Ahmed. Salma.
3: Big Ahmed. Dulhan Naam Le Jayenge.
1: Gana, Gana. Hai, hai. One all ho gaya ye to. कड़ा मुकाबला हो गया है यहाँ पे, तो वन ऑल हो चुका है. खतरनाक, वेरी वेरी एक्साइटिंग. चलो जी, अब ये गाना जो है ये डिसाइडिंग गाना होगा. दोनों तैयार है?
2: Yes.
1: हाँ जी.
2: नो
1: सॉन्ग, आई नीड द सॉन्ग. ये कौन से म्यूजिकल मोड में रहती है? नू नू नू नू नू, उसमें ओ ओ आ आ. बट व्हाटएवर इट इज, शिवानी ने ज्यादा सही जवाब दिए. कांग्रेचुलेशन शिवानी, आप होती है शॉर्टलिस्ट फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. यू आर आल्सो वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स, प्लस योर नेम गेट्स इनटू द ड्रॉ. अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग.
3: Okay, thank you so
1: much. Bye, have a great weekend.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: शिल्पा राव के आवाज मूवी का नाम दोपत्ति, कृति सैनन डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर। फिलहाल आपने अभी भी सुना कैसे शिवानी जो है शॉर्टलिस्ट हो गई है फॉर द बिग समर सरप्राइजेस। बिग समर सरप्राइजेस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमरीद इन रसल खेमा, एंड वी हैड सो मच फन विद द बिग समर सरप्राइजेस। नाउ वी विल बी अनाउंसिंग द विनर वेरी वेरी सून, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक ऑल एक्सपेंसिस पेड स्टेकेशन पे जाएंगे, एंड विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। For that, you need to actually connect with us on our Instagram, 106.2 Big FM. It is, filhal, it's the weekend, and weekend wala mahal hai, weekend wali vibe hai, cocktail 2 se.

0: 92.2 The Beat of Bollywood. Hello.
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना.
2: हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: 36 लो जाएगा राउंड 33. काफी ह्यूमिडिटी है फिलहाल 63% पर.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill and I keep telling you about things that are absolutely thrilling and... बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक नई गाड़ी एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है राइट एंड इफ यू प्लानिंग टू गेट वन देन ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी दिस समर विद जेटॉस अनबीटेबल ऑफर्स वैट ऑन अस और 0% इंटरेस्ट फ्री सर्विस पैकेज इंक्लूडेड है 1 मिलियन किलोमीटर वारंटी है ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 966 दिरहम्स अ मंथ सो विजिट जेटॉर शोरूम्स अक्रॉस अबू धाबी दुबई अजमान एंड अलेन आज ही जेटॉर यूएई पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप होल्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस डू apply so that thrill of driving a brand new Jator it is unmatched so definitely check them out while you're at it jab aapki nayi Jator aayegi to music ki zimmedari meri hai

0: खुला हुआ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड म्यूजिक लाउड शीशा

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: थोड़ी फुर्सत भी मेरी
2: सॉफ्ट रिदम्स, स्लो वाइब्स एंड सॉन्ग्स दैट हग यू बैक। You're in the big chill zone on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800 Alfred 24/7 बिग

0: আছে পানি মত হোশ কি গে যা মুঝে তো মাই খিচে তেরি ও
1: বিগ 106.2 দ্য বিট অফ বলিউড.
2: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip, posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island. Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E&UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
3: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही.
4: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका. फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM. क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया.
5: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
6: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.